0: कौन है रे तू? क्या कर रहा है यहाँ पे? हाँ क्या कर रहा है तू यहाँ पे? हाँ
1: कड़ा बाइक
0: क्या
1: तेरे क्या?
0: नहीं नहीं छोड़ दो मैं,
1: लेकिन चाहोगे तो जान दे।
0: माफ कर दो मैं, छोड़ दो मैं,
1: निकल।

0: रेडियो सुरभि टाइम चेक स्टूडियो लो टाइम 4 PM.
1: अरे ऑगस्ट फ्री ना
2: देनिकी रो
1: प्रभुदेवा डालस को वस्तुन्नारट.
0: आर यू सीरियस? एग्जैक्टली अल्टीमेट पैन इंडिया डांस कॉन्सर्ट एक्सेस्ट्रा सीयू लो ऑगस्ट 1st ने जरगबोतोंदी. 100 पैगा डांसर्स विल परफॉर्म टू द मूव्स ऑफ प्रभुदेवा लाइव इन फ्रंट ऑफ द गॉड ऑफ डांस हिमसेल्फ. फुल धमाकेदार उंडबोतोंदी. वेंटने टिकट्स बुक चेसुकोंडी. बुक योर टिकट्स टुडे. कॉल 248-233-3828.